एक देश का विकास और खुशहाली वहाँ के नागरिकों का आपसी एकता, समानता, सद्भावना तथा सौहार्द पर निर्भर करती है। सच ही है कि हमारा भारत सबसे निराला, सबसे प्यारा, जो समय के थपेड़ों को खाता हुआ भी निरंतर गतिशील है। हमारे भारत की भूमि स्वर्ग से भी महान है। लहराता सागर इसके चरण चूमता है, गगनचुंबी हिमालय इसके मुकुट हैं, गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसके गले के हार हैं। ऐसा हो ही क्यों ना, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति है ही ऐसी गौरवपूर्ण और महिमा मंडल। भारत ही है जिसने विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे समृद्ध देश पर बाहरी आक्रमण हुए, इसे लूटने तथा नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन जब देश को बचाने की बात आई तो लोग एकता के बंधन में बंधकर देश की रक्षा के लिए एकत्र हो गए तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले वीर तथा वीरांगनाओं ने देश पर आंच नहीं आने दिया। देश के इतिहास पर गर्व करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सफलता प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने समाज को नहीं भूलना चाहिए जिस मिट्टी पर हमने जन्म लिया है। यदि निगाहें लक्ष्य पर हो और कदम हो राह पर, तो कोई ऐसा राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। इतनी विविधताएं होते हुए भी हम एकता के सूत्र में बंधे हैं। यद्यपि कुछ शैतानी दिमागी लोग किसी भी चीज को मुद्दा बनाकर समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश करती रहती है, और इसका राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ना तो तय है, क्योंकि इतनी विविधताएं पहले से ही मौजूद है। ऐसे में अगर एक खास वर्ग अपनी चीजों को सर्वोत्तम कहने लगे और दूसरों को अपनाने के लिए मजबूर करने के लिए हिंसा का सहारा लें, तो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को चोट पहुंचना तो तय है। लेकिन उस वक्त हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सोचना होगा कि हम सब मानव हैं। अगर भगवान ने किसी को श्रेष्ठ तथा किसी को बुरा बनाया होता, तो सभी वर्गों के मनुष्य अलग अलग नाम के क्यों नहीं हैं? किसी का खून लाल, किसी का खून पीला और किसी का और रंग क्यों नहीं है? हमारा भारत श्रेष्ठ भारत यह देश ही नहीं, कई देशों का संगम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। अभी तक हमने देश को जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के नाम पर बंटने से रोका है, और कोई भी हमारे प्यारे मातृभूमि को बांट नहीं सकेगा, क्योंकि हम सब एक ही माँ के संतान हैं। जी हाँ, हम भारत माँ के संतान हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, पर अगर भरोसा अपने आप पर है तो तकदीर में वही लिखोगे जो आप चाहोगे। अनेकता में एकता, भारत की यही विशेषता। भिन्न प्रकार के हैं जहाँ लोग, भारत में यह अभिन्न योग। जहाँ रहे अनेकता में एकता, वहाँ के लोगों में है परिपक्वता। अनेकता में एकता अपनाते चलो, देश को एक सूत्र में बांधते चलो।

अभी आप श्रीमती के संडोलमा से रोशनी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी लेह से बोल रहे हैं। आज आकाशवाणी लेने जुंजिकता आज तिरंगी में डिग्री गुण स्कोर गुण सनाजात इन डिग्रम तंगपेना दक्षा चुचौत और दुन तंग कर्मा जिपचिका तत्पाना जिन डिग्रम संचस लफुलिन इना चिरंग दोर्जे फुलकने सुंगुर सबरी ब्रदर्स कुने फुलकने नातिक वाली तंग चवांग डोलमा तंग चिरंग नोरजो में फुलकने छोसलू सनाजात गतो चुचौत रियादिका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात तंग रियत तंग कर्मा चौंक का मॉर्निंग न्यूज सनाजात चुचौत यत तंग फेदिका चिरंग छोरुल तंग चंडोल में सलकने जुंगलुरिक संचस लफुलिन लदासना नसुल अतो चुचो दुर्गुई का सनाचत यां उर्गुतं स्कर्माशिंगे का लासनिस्कोरला कैप्टास्टिक संचस लफुलिन चुचो दुर्गुतं स्कर्माशी का रिक दिन लामतं ठोपा निसल का निलो रिक सनाचत फेले में लोगों ने डिग्रम उर्गुतं फेदिका संचस लफुलिन अतो चुचो तुष्टुने यमी चुचो चुंगी सुपा आकाशवाणी दिल्ली ने एफएम गोल्ड दिल्ली डिग्रम गुन सनाचत निमे छुचोत चुगनी सिका फिल्म लुरिक संचेस लफुलिन छुचोत चुगनी स्तंग फेदिका एन सी ई आर टी चिंता जत कने डिग्रिम उमंग खाक चिक्स्तंग सुमग्यार ग्यात पा संचेस लफुलिन आकाशवाणी दिल्ली ने निमे छुचोत चिगिका हिंदी ना नसुल तंग चिक्तंग स्कर्मार हिंगे का अंग्रेजी ना नसुल सनाजत मग मी ख्योक्तों ने फेडिग्री में नवा छुचोत चिक्तंग स्कर्मार चुनी चिक्तंग स्कर्मार हंगाप चुचुक पा फिल्म लुरिक संचेस लफुलिन आकाशवाणी दिल्ली ने निमे चुचोत चिक्तंग स्कर्मर हंगपची का उर्दिना नस्तुल निसिका मिड डे न्यूज तंग चुचोत निस्तंग स्कर्मा चौंक का दोपहर समाचार सनाजात निमे चुचोत निस्तंग फेदिका स्नला स्तंदिन यंगडोले सलकाने लू टेस्टिंग ने स्तंदिन डर्दुल तंग ठोपाने सलकाने लूरिगांग सनाजात यहाँ चुचोत निस्तंग स्कर्मर हंगपचू गाय का लदाख सना नस्तुल संचस लफुलिन कसतंग अजे दिने डिग्रम निस्पेस कोर गुन सनाजत डिग्रम निस्पेना फिदो छुचो छुंगे का लदाख सना नसुल छुंगा तंग स्कर्मा छुंगे का लेलुंगटिन खांगे नसुल सिते का छोस ने फुल कने डिग्रम स्पॉटलाइट डिग्रम सनाजत फिल्म लुगने डिग्रम छुचो छुंगा तंग फेदे का सनाजतिन आकाशवाणी दिल्ली ने फिदो छुचो टुगे का हिंदी ना नसुल तंग टुक तंग स्कर्मा छुंगे का अंग्रेजी ना नसुल सनाजत गमयुल पिस कदलुन डिग्रिम फितो चुतो टुकतां स्कर्मार्ची का संचस्ता फुलिन डिग्रिम फुलकन दिसकी डोलकर या डिग्रिम को डिग जतखन सोना मांगचु मगमी क्यों तोने फे डिग्रिम में नगा टुकतां स्कर्मा जिपची का फिल्म लुरिक सनजत लदासना नसुलतां रेलचत और दुनतां स्कर्मा चोई का दिरिंग फितो चुतो और दुनतां फेदिका चतन डोलकर हिसलकानी लुरिक सनजत आकाशवाणी श्रीनगर ने अर्दुन तंग स्कर्मा जिपची का उर्दना नस सुल्तान रेल छत सनाचत यहाँ दिरिंग छाने छुतोत रियादी का बलती डिग्रिम मिंदो का छरबू सनाचत दिनी डिग्रिम में नई जराए लोबजोंग सलचे से छगला से स्कूरला स्कूजब अब्दुल इकबाल मोहम्मद इकबाल तंग यहाँ पोटी वाटी लांडिक सनाचत डिग्रिम फुलकन अब्दुल कयूम यहाँ डिग्रिम को डिग जतखन सोनामा चुक छाने छुचोत रिकेत तंग फेदिका चिमेट डोलमा तंग ठोपाने सलकने जाब्रो लुरिक संचस लफुलिन आकाशवाणी दिल्ली ने छाने छुचोत रिकेत तंग स्कर्मा जिपचू जाए का समाचार संध्या न्यूज एक एट नाइट छाने छुचोत रुगी का यांग रुगुतंग स्कर्मा चौंक का उर्दिना नसुल सनाजत यांग दिरिंग छाने छुचोत रुगुतंग फेदिका चवांग रिगजिन तंग ठोपाने सलकने जुंग लुरिक संचस लफुलिन कसा इगुनिन पिंगाजे दिरिंग निमेटिक नुगुनि स्कोर गुन

0: दर्शन जनाई तत्नाव जिंदी क्रीम सनाजस ग जी आकाशवाणी लेने जिन जिगतान ग दोष चौधरी के अच्छा दुख का सता आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात तांग मॉर्निंग न्यूज सनाजात
1: आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
5: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
7: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
5: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
8: एनटीए इज कमिटेड,
9: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
8: एंड वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
3: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning. I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avion remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
4: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
11: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshau Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshau project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
12: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
11: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
5: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagara style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
13: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
5: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashwani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
14: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
5: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
11: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
15: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags, seafarers safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, the announcement of

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: சரிங்க ஜோரல்தான் என் சண்டோல் மிஸ் சல்கானே இல்லுகன் கேஜரான் லைன் கேஸ்லா ஆகாஷ் வாணி லேனே சன்சஸ்லாம் புலிஞ்சிக்தாயின்.

0: daw san jarain sring charul ta yang chandol me sal kane jung lurik sana ja singa ji akash wani le ne jung jing tain ka status so chape sting ni la da sana na sul sana ja
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

फिल्म लुगनी डिग्री में ना कसता दिलिक मंदिर फिल्म लु मोहम्मद रफी ने सनाजात ही लूट संकन हजरत जयपुरी यांग लुआंस टिक्कन शंकर जय किशन।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Da sai jarang film lori ksana za ngaji akash wani leni jun jiktain nga to chuto chu cha duk ka sata akash wani dilli ne fm gold dilli degree mun sana za
1: kar akashwani samachar ke sath main sir firozi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में

0: भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate

0: It in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all the nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Prime Minister Narendra Modi has said that affectionate respect and acceptance instill a sense of pride and contentment in a person. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that this not only boosts self-confidence but also infuses a new sense of energy and enthusiasm. Defence Minister Rajnath Singh has highlighted that India's annual defence production has surged to an all-time high of 1.78 lakh crore rupees in the financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Singh said that this milestone represents an impressive 15.6% growth over the previous fiscal year's output of 1.54 lakh crore rupees and a staggering 110% increase since financial year 2020-21, when the figure stood at over 84,000 crore rupees. He added that indigenous defence production has increased nearly fourfold from 4,746 crore rupees in the financial year 2013-14. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of the scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with the claims of sharing the re-exam paper. Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sar Sangh Chalak of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, Balasaheb Deoras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Balasaheb Deoras dedicated his life to the national service, social harmony and the character building of the youth and considered untouchability to be the greatest curse. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Ranged Lands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of range lands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded range lands. Domestic equity benchmarks traded flat in morning session today after a three-day rally driven by lower crude oil prices and optimism over a US-Iran peace deal. Sensex was trading at 76,817.58, up 8.58 points or 0.01%, while Nifty was at 23,988, down 1 point in early trade. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। पहले सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। G7 देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए समन्वित प्रतिक्रिया का किया आह्वान। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा सुनिए हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेयन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है, जिसमें संक्रमितों का पता लगाना, सीमा पर निगरानी और सामुदायिक सहयोग लेना शामिल है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी एक बार फिर दोहराई है। G7 देशों ने कमजोर देशों की मदद करने और मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए विकास और निवेश वित्त में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है और जान माल को नुकसान पहुंचा है। समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से लगातार आपस में जुड़ती दुनिया के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहल में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान, तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान न करना अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में सबसे बड़ी बाधा है। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 तक पहुंच गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक हस्तियों, कार्यकारी अधिकारियों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को भारत के साथ नवाचार से संचालित एक उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 3 दिन की उपलब्धियां भारत और फ्रांस की नवाचार साझेदारी की अपार क्षमता को दर्शाती हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैटरिन गुन्नास डॉटर और वहां के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और आइसलैंड के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह, पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए 16वां वर्ल्ड कप गोल किया और इतिहास रच दिया। मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने के रिकॉर्ड में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज की बराबरी की। इससे पहले आज सुबह अमरीका के बॉस्टन स्टेडियम में ग्रुप आई के अपने पहले मैच में नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से हराया। कल रात न्यूजर्सी में फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से पराजित किया। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर है। भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 होगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में 12:30 से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुजर्न शहर के पास स्थित बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच ब्रेंट क्रूड की वैश्विक कीमतें 5.4% गिरकर लगभग $79 प्रति बैरल हो गई। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है और फीफा विश्व कप में लियोनेल मेसी ने हैट्रिक बनाई और अर्जेंटीना ने अपने पहले मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हराया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: Good morning, this is Akashvani. I'm Sarabjit Kaur with the world news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. G7 nations announced series of initiatives to strengthen global health, call for coordinated response for Ebola outbreak. Global prices of Brent crude fell 5.4% to around $79 per barrel amid US-Iran peace deal. World Day to combat desertification and drought being observed today. And in FIFA World Cup, Lionel Messi scores hat-trick as Argentina defeat Algeria 3-0 in opening encounter. And now the news in detail. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
2: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avignon, France.
0: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. Mr. Modi also met Kenyan President William Ruto, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Japanese Prime Minister Sanae Takashi, and South Korean President Lee Jae-myung. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. The G7 further reaffirmed its commitment to accelerating the global fight against cancer. Supported by partner countries, including India and Brazil, the leaders stressed the importance of prevention, early diagnosis, and access to quality healthcare, while advocating greater cooperation in cancer research and the responsible use of emerging technologies. This is Akashvani. You're listening to

तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, बस एक शर्त पर, न घड़ी तुम पहनोगे न वक्त हम देखेंगे। तो फिर चलिए, ना मैं वक्त देखूंगी और ना ही आपको बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी आपकी दोस्त नाज वापस आ गई है आपके प्यारे प्यारे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ने और कार्यक्रम में शामिल करने। करना क्या है आपको एक बार फिर याद दिला दूं, वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन नए लिसनर्स के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है कि fmgoldair@gmail.com पर करना है आपको ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी आप भेज सकते हैं 9868687 पर। इसके बाद क्या भाई, बताना है अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये लिखेंगे, और शेर व शायरी या अच्छे विचारों की देखिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में एक और सरप्राइज है आपके लिए, एक सवाल भी लाई हूं आपके लिए जिसका जवाब आप देंगे। तो गौर से सुनिएगा जनाब, आपको बताने हैं आज उस गीत के बोल जिसमें पंचमदा यानी R.D. बर्मन साहब ने कर दिखाया था एक कमाल का कारनामा। गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने किया था एक झाड़ू और एक कॉम्ब यानी कंघी का इस्तेमाल। तो देर ना कीजिएगा, जल्दी से लिख भेजिएगा उस आइकॉनिक गाने का मुखड़ा, और फिलहाल मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम का पहला सॉन्ग जिसकी फरमाइश हमें भेजी है कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही ने, सीधा सतना मध्य प्रदेश से।

हवा में घुली है एक प्यारी सी आवाज। ये आवाज है डियर नाज की, जो दिलों को छू जाती है हर बार। शब्दों में जादू, बातों में अपनापन, बस यही है नाज का अंदाज। माइक खुलते ही जैसे हवा में मीठा पन घुल जाता है, आवाज में वो जादू है। हाँ, वही नाज है। शब्दों को सजाकर दिल तक पहुंचाना, ये हुनर सिर्फ उसमें है। हर लफ्ज की नजाकत, हर बात में अपनापन, फ्रीक्वेंसी पर बजती है एक ऐसी धुन जिसे सुनते ही चेहरा खिल उठे है। बातें आम हैं पर अंदाज नाज का खास है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए अनु बड़जात्या जी। सीधा मुंबई से आ रहा है ये मैसेज, और अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं सीधा चंडीगढ़ से। लिखा है कि पूछा जो एक दिन मैंने खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी, पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान, चांद तारे, चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने में तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के तू अनेजा, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। बहुत ही अच्छी कविता लिखकर भेजी है सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जी के साथ, सीधा चंडीगढ़ सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज आया है हमारे पास होली चौक उत्तम नगर से। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु इसमें शामिल है, और लिख रहे हैं कि यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है ना तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो इनका इलाज पता नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास, जल ही जीवन है। और इस ज्ञान भरे मैसेज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी है अपने मैसेज में। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से ही है। क्या ये इन्हीं का मैसेज है? चीटिंग। व्हाट्सएप पे अलग मैसेज, ईमेल पर अलग मैसेज, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं। आज के सवाल के जवाब मुझे दिखाई दे रहे हैं हर मैसेज में, लेकिन मैं ढूंढ रही हूं कोई ऐसा मैसेज जिसमें लिखी हो कोई अच्छी सी शायरी या कोई अच्छी सी बात जिसे पढ़कर मेरा भी दिल खुश हो जाए, है ना। तो चलिए, मिल गया है मुझे एक ऐसा ही मैसेज। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उसके मकान की। सभी मजहब के लोग रहते यहाँ खुलूस व अखलाक से, यही तो खासियत है हमारे प्यारे हिंदुस्तान की। क्या बात है। भारत भूषण जी ने ये मैसेज भेजा है, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ, व्हाइट फील्ड, बेंगलुरु से। बहुत ही प्यारा मैसेज, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगला मैसेज मैं ढूंढ रही हूं जिसमें लिखी हो कुछ ऐसी ही बात। मधु किरण जी का मैसेज आया है, फरमाइशी गीत लिखकर भेजा है, और लिखा है कि हमें आपकी आवाज पर बहुत नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए भी। और चलिए फिर, जब तक आप और मैसेजेस भेज रहे हैं तब तक मैं एक और फरमाइश पूरी कर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना आने वाला है, पहले ही बता रही हूँ, लता जी की आवाज में है, और सच में मेरा तो फेवरेट है। और कमाल की बात यह है कि दो जगह से इस गाने की फरमाइश आई है, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी, गांव टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से, और साथ ही मेरठ कैंट दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी भी इसी गाने को सुनना चाह रहे हैं। तो चलिए हम सब सुनते हैं मिलकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से।

0: दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

तो स्वागत है आपका दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम जहां आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि उन मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मैं कार्यक्रम में शामिल कर पाऊं। तो फिर चलिए मैसेज इसी के साथ एक शामिल कर लेते हैं। अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी जी ने एक मैसेज भेजा है। कहां से? दाऊद सराय सहारनपुर से आया है ये मैसेज। नमस्कार लिख रहे हैं, आदाब कर रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि किसी भी गीत में शामिल हो जाएं। तो लीजिए, हमने आपको कर लिया प्रोग्राम में शामिल और जो मैंने आज का सवाल आप लोगों से पूछा है उसके जवाब तो लगातार मुझे नजर आ रहे हैं और एक खूबसूरत सी बात भी नजर आ गई है कि वो झील, वो नदियां, वो हवाएं, एक तरफ उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा एक तरफ, वो मेरे ख्वाबों में आए और मुझे सताए, नींद की खुमारी एक तरफ, उसका सताना एक तरफ। क्या बात है। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब ने भेजा है ये मैसेज, जिसके लिए हम करते हैं आपका शुक्रिया। और अगला मैसेज स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह भी शामिल हैं इस मैसेज में। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से आया है ये मैसेज और साथ ही भेजी है अपनी फरमाइश भी। और चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं ईमेल का और वहां देख लेते हैं कि किस किस ने भेजा है मैसेज। तो चारू

अटोलिया जी का मैसेज आ गया है, लिख रही हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आपका एपिसोड बहुत अच्छा है, और साथ ही अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है, नागलोई दिल्ली से आया है ये मैसेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्कुराहट की बात एक मैसेज में लिखी गई है कि जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है मुस्कुराहट, नाज जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है, जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश, और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मैसेज है, बहुत ही अच्छी बात लिखी है सईद अब्बासी जी ने, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी कर रहे हैं, जिसे माफ कीजिएगा अभी तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घड़ी कम वक्त बहुत तेजी से दौड़ रही है, और कोशिश मैं कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मैं शामिल कर सकूं। तो जी, शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा ने भी मैसेज भेज दिया है, और लिख रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो, प्रस्तुतकर्ता को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जाखोद राजस्थान से ये मैसेज भेजने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उस गीत की जिसके बोल आप भेज रहे हैं लिखकर लगातार। जी हाँ, जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर के लिए जिस गाने में पंचमदा यानी आरडी बर्मन साहब ने किया था कमाल का एक्सपेरिमेंट, उसी गाने की आज बात हो रही है। पूरी तरह से सफल इस एक्सपेरिमेंट को कह सकते हैं हम। शुरुआती पिक्चराइजेशन जब आप गाने की देखते हैं तो मशहूर कॉमेडी अभिनेता केशतो मुखर्जी साहब को देखते हैं आप, जो कि किशोर दा के इशारे पर फुल मस्ती के साथ झाड़ू और कंघी के साथ कुछ म्यूजिक निकाल रहे हैं। और जनाब, वो आवाज सच में झाड़ू और कंघी से ही निकाली गई है। सबसे मशहूर, सदाबहार और मजेदार गाना है ये फिल्म पड़ोसन से, जहां सामने वाली खिड़की पर चांद देखा है राजेंद्र कृष्ण साहब की कलम ने, और आवाज का जादू बिखेरा है किशोर दा ने। बाकी गाना और उसका वो खास म्यूजिकल हिस्सा भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे उन सभी लिसनर्स के नाम जिन्होंने इतनी मेहनत से इस सवाल का, इस गीत को ढूंढा उन्होंने और लिखकर भी भेजा हमें मैसेज के जरिए इस गीत का मुखड़ा। तो सबसे पहले जो मैसेज हमारे पास आया वो आज था सतप्रकाश गोयल जी का रोहिणी से, सुनील गायकवाड़ पुणे से, उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, मधुबाला कोटला दिल्ली से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ही, और राजकुमार डूंडी फरासी हिसार से, तुलसी मस्कीन दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, कैप्टन ईश्वर चंद शर्मा द्वारिका नई दिल्ली से, एस के खन्ना विकासपुरी से, और प्रकाश गोगिया जी ने भी भेज दिया है अभी कुछ देर पहले ही सही जवाब, दिल्ली से। और चलिए, चूंकि वक्त थोड़ी सी मोहलत हमें दे रहा है तो हम और मैसेजेस शामिल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस किस ने भेजा आज के सवाल का सही जवाब। तो जी, अभी मुझे नजर आ रहा है मस्कीन दादा जी का मैसेज। लिख रहे हैं कि एक अच्छा और समझदार इंसान वो है जिसके विचार और कार्य समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार और मूल्यों से होती है। बिल्कुल सही बात है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आया है ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुशील जी का भी मैसेज आया हुआ है और लिख रहे हैं कि आपने कभी हमारा मैसेज ऐड नहीं किया, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, आज कर लिया माफी के साथ। चंदा पठानिया, अंजलि पठानिया, सचिन पठानिया के साथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से भेजा है ये मैसेज, उम्मीद है नाराजगी दूर हो गई होगी। प्रकाश गोगिया जी ने लिखा है कि देखिए, शायरी तो मुझे आती नहीं इसीलिए आपकी तारीफ में क्या लिखूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, नमस्कार। बड़ी ही साफगोई से बात कही है आपने, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। दिल्ली से भेजा है ये मैसेज। और सवाल के जवाब की जहां तक बात है तो बोधराज खोरवाल जी ने भी भेज दिया है आज के सवाल का सही जवाब।
इसके साथ ही लालगिरी साहब का भी मैसेज मुझे दिख रहा है, लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भेजा है अपना फरमाइशी गीत। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भेजा है मैसेज। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इसमें शामिल हैं। और अब सुनना बनता है वो गाना जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमारी मुलाकात कब होगी ये तो आपको वैसे याद ही होगा, ये गाना आप सुनेंगे, इसके बाद सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद होगी तस्वीर एक खूबसूरत जगह की जिसकी सैर पर निकलेंगे आप मेरे यानी नाज के साथ। फिलहाल इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत गीत जो मैंने आपके लिए सेट कर दिया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors, while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Union Home Minister Amit Shah has paid tributes to the third Sarsangh Chalak of the Rashtriya Swam Sevak Sangh, Bala Saheb Deoras, on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that Bala Saheb Deoras dedicated his life to national service, social harmony and the character building of the youth, and considered untouchability to be the greatest curse. Lok Sabha Speaker paid tributes to the valiant hero Maharana Pratap on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Birla said that the life of Maharana Pratap is an immortal saga of unwavering self-respect, self-esteem, freedom and national devotion. He added that even in the most adverse circumstances, Maharana Pratap never compromised on his principles, culture and the honour of motherland. The Lok Sabha Speaker underlined that from the battlefield of Haldi Ghati to the impenetrable hills of Devar and Aravali, the life of Maharana Pratap stands as a unique example of sacrifice, patience and indomitable willpower. World Day to Combat Desertification and Drought is being observed today globally. The theme for this year is Rangelands, Recognize, Respect, Restore, which calls for greater recognition of the economic, ecological and cultural value of rangelands, respect for their traditional stewards and stronger investment in restoring degraded rangelands. On this occasion, Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav urged all to remember that land is the foundation of all ecosystems and the source of our nutrition and energy cycles. The price for a barrel of Brent crude fell 5.4% to $78.66. With this, the oil prices dipped below $800 per barrel for the first time since March this year. The dip comes amid optimism continuing that a tentative US-Iran deal on their war will reopen the Strait of Hormuz at the end of the week and get the global flow of oil going again. In the wake of US and Israeli strikes on Iran beginning 28th of February, crude oil prices skyrocketed, climbing up to nearly $120 per barrel. In men's cricket, India A were 115 for 1 in 14.4 overs against Afghanistan A in Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. Earlier, Afghanistan A won the toss and opted to field first. Tilak Verma-led Indian side have managed to win only one out of three matches in the series. In their last encounter, India A faced a dramatic defeat by Sri Lanka A. And that is the end of this news bulletin.

Namaskar, suswagatam, assalamualaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11 और 25 सेकेंड्स एंड एज यू नो ऑलरेडी ये समय है सैर सपाटे का क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं तो हूँ पूरी तरह से तैयार लेकिन क्या आप तैयार हैं अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पूर्वोत्तर भारत शिवालिक पहाड़ियों पर लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे और करेंगे एक खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर जहां की सड़कों को छूते हैं बादल और हरे भरे पहाड़ हर मोड़ पर दिखाते हैं एक नया और खूबसूरत नजारा पैराडाइज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का स्वर्ग जिसे कहा जाता है और नाम क्या है इस जगह का वो मैं नहीं बल्कि आप ही मुझे बताएंगे कहां कैसे ये आप जानते हैं पर फिर भी याद दिला रही हूं fmgoldair@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे 9868686853 पर

बस बेटा, ये जगह तो कश्मीर लग रही है कुछ कुछ। नहीं, माफ कीजिएगा गौरीशंकर जी, ये जगह कश्मीर बिल्कुल भी नहीं है। सुदर्शन मुखी जी ने भी नाम गेस करने की कोशिश की है, शिलोंग लिखकर भेजा है। माफ कीजिए जनाब, कुछ कुछ सही है। आप नॉर्थ ईस्ट में है शिलोंग, लेकिन आज की तस्वीर शिलोंग की नहीं है। और साथ ही एक मैसेज और आया है, महेश अग्रवाल जी का, लिख रहे हैं कि सवाल का जवाब दिया है लेकिन मेरा ईमेल शामिल नहीं होता है। कोई बात नहीं, मैं शिकायत नहीं करता, शिलोंग ही गैस कर रहे हैं, माफ कीजिए शिलोंग सही जवाब नहीं है। और एक जवाब आया है अभी अभी, अनु बड़जात्या जी ने लिखा है सिक्किम। बहुत करीब हैं आप, जी हाँ, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक चल रहे हैं आज आप मेरे साथ। और कैसे पहुंचना है वहां तक, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो बाय एयर आप अगर जाएंगे तो लैंड करेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि यहां से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। और यहां से आप बाय हेलीकॉप्टर सर्विस या फिर बाय रोड टैक्सी या फिर कैब के जरिए भी गैंगटॉक तक पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन आने के लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, जहां ट्रेन से उतरने के बाद आपको आराम से प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है गैंगटॉक के लिए। और बाय रोड, खूबसूरत रास्तों और नजारों को निहारना है तो भाई पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से NH10 पकड़ लीजिए और सीधा पहुंच जाइए गैंगटॉक, जिसके लिए डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी लगभग 115 किलोमीटर। फिलहाल सुनिए ये अगला गाना और फिर जब वापस आएंगे तो मुझे है आपको बताना कि किस मौसम में चाहिए आपको गैंगटॉक का प्लान बनाना।

देखिए, वैसे तो साल भर ही गैंगटॉक का मौसम बढ़िया रहता है, लेकिन मार्च से जून के बीच अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मौसम बेहद मस्ताना और सुहाना ही मिलेगा। खिलते हुए फूलों की घाटियाँ आप इस मौसम में यहाँ देख पाएंगे, और इसके बाद मॉनसून में आप चाहें तो भी गैंगटॉक की सैर कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आसमान साफ रहता है और दूर मौजूद बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपको साफ साफ नजर आती हैं। अच्छा, गैंगटॉक, इस जगह को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं। स्थानीय लोग इसे गांगटॉक या गंगटोक कहते हैं। तिब्बती और सिक्किमी भाषा में गंग का मतलब होता है पहाड़ और टोक का मतलब होता है चोटी, तो मतलब हुआ पहाड़ी की चोटी। और बस वहीं तो पहुंच गए हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। बेमिसाल ब्यूटी और बादलों की लुका छुपी के चलते इस शहर को बादलों का शहर भी कहा जाता है। और क्या कुछ खास है यहाँ गैंगटॉक में, जानेंगे इस अगले ट्रैक को सुनने के बाद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं मेरे यानी नाज के साथ और ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम और उसकी राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है गैंगटॉक, जहां की सैर पर हम निकले हैं। साल 1840 में एंचे मठ के निर्माण के बाद गैंगटॉक एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी मशहूर हुआ और फिर साल 1894 में यहाँ के शासक चोग्याल थोतोब नामग्याल ने इसे सिक्किम की राजधानी बना दिया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये तिब्बत के ल्हासा और कोलकाता के बीच व्यापार के लिए एक अच्छा और बेहतर पड़ाव बना रहा और फिर साल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिक्किम में गैंगटॉक को अपनी राजधानी बनाए रखा और एक स्वतंत्र राजतंत्र बने रहने का विकल्प चुन लिया।

आपको यहाँ घने वन मिलेंगे जिनमें चिनार, बर्च, ओक और एल्म के पेड़ भरपूर दिखाई देंगे। ऑर्किड फूलों की दुर्लभ किस्में आप यहाँ देखेंगे। सूरजमुखी, गेंदा जैसे फूल भी आपको यहाँ हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, जो दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे।

देखिए, किशोर दा को सुनने के लिए भले ही आप रुक जाएं, लेकिन गैंगटॉक के सफर पर आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ यानी गैंगटॉक में आपके लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले आप पहुंचिए इस शहर के दिल यानी एमजी रोड यानी महात्मा गांधी रोड, जो कि यहाँ की सबसे साफ सुथरी जगहों में से एक है। यहाँ तक कि वाहनों का आना जाना भी यहाँ मना है। जी हाँ, सनसेट के बाद इस जगह की बात ही निराली है, क्योंकि चढ़ती शाम के साथ यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी जगमगाने लगती है।

और उस रोशनी में यहाँ की साफ सुथरी सड़कें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद आप आइए समरसा गार्डन, जहाँ रंग बिरंगे फूल आपका दिल खुश कर देंगे। बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से आप यहाँ पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखेंगे। एक तरफ विदेशी पौधे तो दूसरी तरफ देसी पौधों की किस्में आपको नजर आएंगी, और जिन्हें सिर्फ देखने भर से ही आपकी सारी थकान उतर जाएगी।

जी हाँ, हैरान हो जाएंगे आप जब गैंगटॉक की सैर पर निकलेंगे और करेंगे यहाँ होने वाली सारी एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, केबल कार की सवारी या फिर हो बात याक सफारी की। गैंगटॉक में सब कुछ है आपके लिए। और इसके लिए आपको पहुंचना होगा कहाँ? नाथुला पास, जो सिक्किम की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। गैंगटॉक से इसकी दूरी 54 से 56 किलोमीटर के आसपास है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 14,140 फीट। मौसम हमेशा ठंडा ही मिलेगा आपको यहाँ पर। गर्मियों में भी 10 डिग्री से नीचे आप यहाँ का तापमान महसूस करेंगे और सर्दियों में -25 डिग्री -25 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है। मतलब जबरदस्त स्नोफॉल यहाँ पर होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मेन मोटर मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पहुंचने की इजाजत सिर्फ भारतीय नागरिकों को है और जिनके पास भी सिक्किम पर्यटन विभाग और सेना द्वारा जारी खास परमिट जरूर होना चाहिए।

गैंगटॉक में ही किसी रजिस्टर्ड ट्रैवलिंग एजेंट के जरिए आप ये परमिट बनवा सकते हैं। बुधवार से रविवार तक ये जगह आपके लिए खुली रहेगी, जबकि सोमवार और मंगलवार को ये जगह आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहती है।

0: जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
4: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
5: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
5: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां खूबसूरत गैंगटॉक की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, जहां अब मैं आपको लेकर चल रही हूं सेवन सिस्टर वाटरफॉल। उत्तरी सिक्किम के रास्ते पर और गैंगटॉक से करीब 32 किलोमीटर दूर ये एक बेहतरीन पड़ाव है जहां आप रुक सकते हैं और सुकून से भरे कुछ पल बिता सकते हैं। खासियत इस वाटरफॉल की ये है कि यहाँ पानी की एक बड़ी धारा आप देखते हैं जो ऊंचे पहाड़ों से तीन अलग अलग लेवल्स या कहें कि टीयर्स में नीचे गिरती है। दूर से देखेंगे तो ये धाराएं आपको अलग अलग दिखाई देंगी। फोटोग्राफी के लिए जगह परफेक्ट है, बस पानी ज्यादा है तो थोड़ी सावधानी की जरूरत जरूर है।

साल के आखिर में अगर आप गैंगटॉक आते हैं तो यहाँ की सोंगमो झील आप जरूर आइएगा, क्योंकि उस समय यहाँ का पानी जम जाता है और तब ये जगह एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस में बदल जाती है, जहाँ आप आइस स्केटिंग, फिशिंग और कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। गैंगटॉक से इस जगह की दूरी है लगभग 37 किलोमीटर, जो अपने बदलते रंगों और बर्फीले नज़ारों के लिए मशहूर है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते और खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती घुमावदार सड़कें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सिक्किम के लोगों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए इस झील के पानी के रंग को पढ़ते थे। और फिर आप जरूर जाइएगा रूमटेक, जो कि गैंगटॉक से 23 किलोमीटर दूर है। एक शांत जगह है और यहीं पर आपको रूमटेक मठ भी नजर आएगा, जो कि कारग्यू संप्रदाय के परम पूज्य ग्यालवा करमापा का निवास स्थान भी है। फिर भगवान गणेश को समर्पित गणेश टोक मंदिर भी आप जा सकते हैं और अपने जीवन के रास्तों के सारे विघ्न उनसे दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं।

और अब चलते चलते अगर आप थक गए हैं तो लीजिए थोड़ी सांस और लुत्फ उठाइए गैंगटॉक के लजीज स्वाद का। यहाँ का खान पान आपको बेसिकली नेपाली, तिब्बतियन और भूटिया कल्चर से इंस्पायर महसूस होगा। पहाड़ी इलाका है और ठंड बहुत ज्यादा है, तो लगभग सब कुछ आपको गर्मा गर्म ही परोसा जाएगा। मोमो यहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसे आप गैंगटॉक की लगभग हर स्ट्रीट पर एंजॉय कर सकते हैं। साथ में तिब्बतियन शैली में बना गर्मा गर्म नूडल सूप थुकपा आप यहां एंजॉय करेंगे। शाफाले जो कि एक डीप फ्राइड तिब्बतियन ब्रेड है और जिसे मीट या फिर सब्जियों से स्टफ्ड किया जाता है, उसे भी आप जरूर टेस्ट कीजिएगा। ड्रिंक्स में बाजरे से बनी चांग या थोंगबा और साथ ही तिब्बतियन स्टाइल में बनी चाय जिसे सुजा कहा जाता है और जो सामान्य से बिल्कुल अलग और थोड़ी सी नमकीन होती है, जरूर आप अपने मेन्यू में शामिल कीजिएगा। और साथ में एंजॉय कीजिएगा तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज का ये लास्ट सॉन्ग। साथ ही मुझे यानी नाज को दीजिएगा इजाजत फिलहाल आपसे विदा लेने की, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर और नमस्कार।

फिल्म मिलहुई डिग्री में स्थिंग जुपेका कसता दिल तो पागल है फिल्म लू लता मंगेशकर तंग उदित नारायण ने सनजात लूर समकन अनन बख्शी यांगलो यांग श्रीकन उत्तम सिंह।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूं। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओं। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओं, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त। लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
2: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
3: दादी जी।
4: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
3: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
4: हाँ पूछो।
3: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
4: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
3: अच्छा।
4: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
3: अच्छा।
4: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
5: अच्छा।
4: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
3: मंगल पांडे।
4: हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
5: अच्छा।
4: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
1: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी, खुद करनी होगी,
5: खुद करनी होगी, सही कहे।
0: फिर क्या हुआ दादी?
1: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
1: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
0: अच्छा।
1: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
6: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसा चल नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं
2: पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ?
1: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
7: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
8: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
7: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े,
8: बिल्कुल
1: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा

0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
1: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: मंगल पांडे
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉर्म आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
4: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
5: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
1: अरेस्ट करो!
4: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
5: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे।

0: मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
1: अच्छा।
0: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
2: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भईल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
1: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
4: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
5: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
6: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
5: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
6: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
5: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
6: अच्छा माँ।
7: माँ,
6: लो देवेंद्र भी आ गया।
7: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
5: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
6: ठीक है माँ।
7: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
6: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
7: ये देखो दीदी, ये मारा।
6: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
7: अरे ये मारा।
6: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
7: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
6: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
7: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
5: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
6: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
8: हमें अंदर आने दो।
6: अरे क्यों?
9: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
6: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट।
6: माँ,
8: ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
6: अरे
9: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
6: क्या हुआ? देखो जल्दी,
5: ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
8: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
6: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
8: ये चाकू देख रही है ना?
6: छोड़ दो।
5: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
9: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
5: अरे, अरे मेरे पास छोड़ो,
6: मेरी माँ को छोड़ो।
8: चुप चुप, आवाज निकाली। कहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
9: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
10: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
6: देवेंद्र।
1: हाँ दीदी।
6: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
1: हाँ।
6: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
1: अच्छा।
6: हेलो।
11: हाँ बेटा बोलो।
6: पापा। पापा।
11: हाँ बोलो बेटा।
6: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
11: कौन घुसाए?
6: माँ को बहुत मार रहे हैं।
11: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
6: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
1: अच्छा।
6: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसाए हैं, बचाओ बचाओ।
12: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
13: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। हाँ वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
5: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
13: देखो ना, सबकी जान बहादुर है मेरी
12: बच्ची। अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
14: उमंग, उमंग,
15: उमंग। ngaje akashwani lene jun chiktain ni mechu so chikcha do kasat akashwani dilli ne so na hindi yang testing ne angrizinan hasul sanajat
16: kar akashwani samachar ke sath main lovleen nigam। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
17: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
16: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
18: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi is set to participate in a series of high-level outreach programs today on the second day of his visit to Avignon in France for the ongoing G7 summit. However, attention is firmly focused on his bilateral meeting with United States President Donald Trump scheduled for this evening. This will be the first face-to-face interaction between the two leaders since their last meeting in Washington, D.C. in February 2025. During the talks, both sides are expected to deliberate on ways to further strengthen India-US bilateral cooperation across multiple sectors, along with discussions on key regional and global issues of mutual interest. The Prime Minister will also attend a working session themed Promoting Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Growth for the Benefit of All. The session will include G7 member countries, partner nations, as well as representatives from the International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development. Besides his meeting with the U.S. President Donald Trump, Mr. Modi will participate in a working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting will bring together G7 leaders, partner countries and chief executive officers of leading artificial intelligence companies to discuss the future of digital innovation and responsible AI development. On the sidelines of the summit, PM Modi is also scheduled to hold bilateral meetings with European Commission President Ursula von der Leyen and German Chancellor Friedrich Merz. Later, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Paris this evening as part of his visit to France. Tomorrow morning, Prime Minister Modi is scheduled to hold meetings with leading chief executive officers. Later, he will participate in the WeaverTech Summit. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Evian, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. The Prime Minister said, "It is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade." Prime Minister Modi has highlighted that India's defense capabilities have witnessed significant transformation over the last decade, guided by the vision of self-reliance and powered by innovation, technology and indigenous manufacturing. Sharing a thread of MyGov on his social media account, Mr. Modi explained how the country has strengthened its defense capabilities across air, land, advanced indigenous technologies. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called on Prince Albert II of Monaco. In a social media post, Mr. Goyal said that during their meeting, they discussed expanding the India-Monaco partnership in sectors such as sustainability, the blue economy, innovation and emerging technologies. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level inter-ministerial meeting in New Delhi to review stubble management measures and discuss long-term solutions to crop residue burning. During the meeting held yesterday, Mr. Chauhan highlighted the role of active monitoring by the Stubble Protection Force across 70 tehsils in 14 districts of the National Capital Region. In Puducherry, 3 new ministers were inducted into the cabinet today, completing the long-awaited expansion of the Council of Ministers. All India NR Congress MLAs P. Rajvelu and VP Shiv Kolundhu and BJP MLA GNS Rajashekaran were sworn in as ministers at a ceremony held at Lok Nivas. In FIFA World Cup 2026, Austria won its first World Cup victory in 36 years with a 3-1 win over Jordan today. Earlier defending champions Argentina also began their World Cup campaign with a dominant 3-0 win over Algeria at Kansas City Stadium in the United States this morning. Lionel Messi scripted history by scoring his 14th, 15th and 16th World Cup goals with a hat-trick in the game. And that is the end of this news bulletin.
15: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्स और एफएम 101.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हुआ है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस मनपसंद कार्यक्रम में अब सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है रेड्डी फिल्म से, तुलसी कुमार और केके की आवाज़ों में। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीतकार है प्रीतम।

अगला गीत सुनते हैं रोड फिल्म से मोहित चौहान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार है मकरन देशपांडे और संगीतकार है संदेश शंडलिया।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: लीजिए अब बजरंगी भाईजान फिल्म से गीत सुनते हैं, जुबिन नोटियाल की आवाज़ में। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीतकार है प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे रॉकस्टार फिल्म से गीत, मोहित चौहान और साथियों के आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार थे एआर रहमान। फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं सनम रे फिल्म से गीत, अमल मलिक और साथियों के आवाज़ों में। गीतकार हैं मनोज यादव और संगीतकार हैं अमल मलिक के।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं मोहित चौहान को जब वी मेट फिल्म से। गीतकार है इरशाद कलमी और संगीतकार है प्रीतम।

फिल्म गीतों के अंत में फौजी भाई आप सुनते हैं क्या कहना फिल्म से, सोनू निगम और आलका याग्निक की आवाज़ों में, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है राजेश रोशन।

0: ngaje akashwani lene jun chik tang in ni me chuzo chik tang skar ma ngap chu chaduk kasata akashwani delhi ne sunla urdina natsul yang me the news tang do pehar samachar sanazad
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियो में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसला कुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ओडीआई भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के शहर एवियो में जारी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए अपने दौरे के दूसरे दिन आज आला सतह के कई आउटरीच प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अलबत्ता सबकी तवज्जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दो तरफा मुलाकात पर है, जो आज शाम मुनक्किद होगी। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी में इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त से अब तक ये इन दोनों रहनुमाओं की पहली बिलमुशाफा मीटिंग है। बातचीत के दौरान उम्मीद है कि दोनों रहनुमा बहुत से शोबों में भारत अमरीका दो तरफा तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों और बाहमी मफाद के कलीदी नौयत के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम एक वर्किंग जलसे में भी शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सभी के मफाद के लिए मुतवाजन, सबकी शमूलियत वाली और पायदार इकतसादी तरक्की को फरोग देना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के अलावा जनाब मोदी एक वर्किंग लंच में भी शिरकत करेंगे, जिसका

0: or storing them till the date of the examination is compromised in any manner.
1: In Manipur, security forces intensified counterinsurgency and law enforcement operations across the state, arresting 3 militants and destroying 26 illegal bunkers in separate operations, said the officials today. The militants were arrested from different locations in Imphal West District. Police said they were allegedly involved in multiple violent and criminal activities. U.S. President Donald Trump has criticized Israel's military campaign against Hezbollah in Lebanon, saying the conflict has continued for too long and has led to excessive civilian casualties. Speaking on the sidelines of the G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defense Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defense production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया 3 आतंकवादी गिरफ्तार 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी अब समाचार विस्तार से G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए जी सेवन प्लस स्पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। जी सेवन देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान जी ट्वेंटी के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में जी सेवन शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025
3: में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से जी सेवन सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
4: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
3: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
6: We are now consistently ranking in the...
7: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुंच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
6: The growth rate has been very good.
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
8: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
3: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
9: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
10: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
11: ईरान ने आरोप लगा है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Medium wave kilohertz chikstong apchung aksum yang na meter span ngib gya gya chukab ji tang shuzur gu. Yang FM megahertz gya nang chik tang shuzur chigika nga jay akashwani leni jun chik tangin. Ngime chukzot ngiz na phet chaduk. Kasata chukzot ngiz tang apchung a tsukpa lurik sanazad. Sngol la stanzi nyang lulit salkani ilubo sanazad.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसता इस दिन ने संजन डरुल तांग छोपा को ने सलकने लूरिक सनजात।

तक्सा निजे रंगे स्टैंडिंग रूल तंग ठोपा गुने साल कने लुरिक सनाजाज नजे आकाश वाणी लेने जुंजिक तंग ये मैं चुसो निस्तंस कर मांग अपचुंगा छादो कसता लदाख सनान हसुल सनाजाज

कसता आग और शोला फिल्मेलू मनहर उदास तंग अनुराधा पौडवाल ने सनजत आनंद बख्शी सोमस्कानीलू और लुयांग श्रीकन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्स ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today addressed a crucial working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit in Avion, France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
1: In his address at the session, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. He also proposed connectivity projects linking Africa, Latin America, and the Pacific Island countries. He also suggested the creation of international mobilization partnership for accelerating connectivity and trade, in which G7 capital, India's talent, and Global South's ownership could be combined. During the session, Mr. Modi also highlighted that tangible growth leads to inclusion and well-being of the people. And spoke about India's growth story underpinned by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Ankit Kumar, Akashwani News, Avion, France.
2: The high-level session was attended by G7 member nations, partner countries and key representatives from the International Monetary Fund and the OECD. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. This meeting brought together G7 member countries, partner nations, and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum in the India-Germany strategic partnership, with the successful visit of Mr. Merz to India and the conclusion of the India-EU FTA negotiations earlier this year. Mr. Merz invited the Prime Minister for the 8th India-Germany intergovernmental consultations scheduled to be held later this year in Germany. Prime Minister Modi also held a meeting with President of the European Commission Ursula von der Leyen and President of the European Council Antonio Costa on the sidelines of the summit. Now, all eyes are firmly set on the Prime Minister, Mr. Modi's highly anticipated bilateral meeting with United States President Donald Trump, scheduled for this evening. Union Home Minister Amit Shah today reviewed the functioning of the National Cybercrime Helpline 1930 at a meeting in New Delhi and instructed the officials to revamp it. Mr. Shah also directed the officials to use artificial intelligence and multilingual support to facilitate ease of reporting. He directed the agencies to work closely with the states to pivot each call to its logical end and also asked to address the grievances arising out of freezing of bank accounts. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupinder Yadav today said that India has already brought about 22 million hectares of land under restoration efforts against the target of restoring 26 million hectares by 2030. He said this while addressing the event to commemorate World Day to Combat Desertification and Drought 2026 in New Delhi. Speaking on the theme of this year's observance, Rangelands Recognize, Respect, Restore, Mr. Yadav said that rangelands and grasslands play an important role in biodiversity conservation, livestock-based livelihoods, regulation of the water cycle, carbon sequestration, and climate resilience. In Gujarat, 6 people, including a 9-year-old child, died in an accident between a truck and a private bus in Vadodara. 27 others were injured and shifted to SSG Hospital in Vadodara for treatment. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have expressed grief over the tragic accident on the Vadodara-Jarod road in Gujarat. In another incident, at least 6 women died while 3 others got injured after the e-rickshaw in which they were travelling collided with a tractor in Ujhani area of Badaun district of Uttar Pradesh this afternoon. Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath have expressed deep sorrow over the incident. In sport, in cricket, India have set a target of 403 runs for Afghanistan in the second ODI of the 3-match series in Lucknow. India were bowled out 402 in 49.4 overs. Both Shubman Gill and Ishan Kishan scored centuries. Gill made 154 while Kishan contributed 125. In reply, Afghanistan were 18 for no loss in 3.4 overs. That is the end of this news bulletin.
3: ngaje akashwani lene shunjiktang in pidoch sot tuktang skarmash chu chado kasata gamul peskatlon digrim sanajat digrim pulkan diskit dolkar digrim ekorik zat khan sonam anchuk

0: 我下午我再看你。对，比了当了，我浪当了，来。那我们在上班，January我浪当当了，还去马上当干部，这个马上开始下，March April 我们当干部，直接下了，来，下了下了。我这上班就为了，因为我下午我下午下午下午在干部。
1: 干啥？
0: 对，平常他们呢，你哪能来？人家下午下午上班，现在哪个呢？白忙忙的，下午下午白忙忙的，对，当当了，March 不都是不干部了？对，没这不干部。因为嘛，我这都不接着了。我打工就是下班的跑了，刚刚上班了，给不叫我们给为了钱弄过来。माने दुख छ मिल गेले कि माने सिमंगा सिंगा तेल के माने राला सोचो छ छ मिल गेले तेना खो बिसुना मान्ता दुख छ
1: माने तिनी कसा कसु छ राउले जुता नता तिनी जन्मिका नता तिनी हलाले तंगा गेवांग जिक्से तिनी नता चकला जदा नो तिनी नेरा छ गने ता पेमनन खुरते तिनी अमी गुने नेरा ता स्तोत पंग यो दुबा तिनी हलाले ता खोई छकने तिनी गा का तंग चुक न तिनी युकन पेमन गेला छ जिरकन बो तिनी ता ते जने तिनी खोनला पेमन खुरते ता चुली कुशी उन छक सनंग पो तिनी कसु छ थुक लगों सराउले
0: ते वो इधर कुनो चुच्चे स्पीड लगाता यंग इधर कुंबिया नो पाले तेरे खोरांग चिक्षण चले तासे गाता कुशी बिगना बिंका निकाल चिक्षण ते गाने चाप तुच्चे सी तो इस पते वो पूरा केट चले तांगाता होटल जिया तुच्चे वो दुप तासे गाता पर चंगमाल देमे वो ते वंग यान नो माता एकदम रिरिल चो तासे कोई यामी रोले लामे थामा हाइब्रिड माने माने खाओ में
1: कैसा
0: माने गला खाओ ते देने मियो मत अच्छा जने मियो माते वो का तंगता तंगते वो मदद ना ले इसको मदद ना कोई लोची की कोई रिश्तन तो पकाते हैं सोचते हैं जरा ते वो समथिंग है माने गरा चुक ने माने क्वालिटी गला खाओ ते तंग दिया ले कैसा तांस में मियो मां हाजे दुक ते माने गातं हाशिक बाजार ये पिया की भाई ये ना चासपोस पे गया लाउं तो माने इंगा जाने दुख चाहिए तेरे घरा आता है जो चुरा की ये गोख से पिया ले घरा चासपोस तांग संग मियू में तांग संग गल ला घरी चासपोस तो तांग काबू ये यंग कनाल जीर गाजी सोशिया यंग तांग चासपोस दुन्जू गाजी सोशिया गोबी तांग ब्रोकली तांग तेरा चोला टाम ते छमा तांग ते उंगा ला घरा तांग ते तेरे दुख कुछ चोस पसंद है तेरे तेज थी मुझे तेरे मियू में ये सब लेता गला योजना तेरे को मित का मिलियन था ना तंग आता है साउंड बंग आता है ना देखी बिंगान जी चुटा बिंगान देखी सिकंग से तंग नानी तेरे ते वो एकदम मेंटल गुड चाचेस या तो चाचेस मैंने गला छह मिल गया तेरे ना तो लगे साउंड ना दर्शन पक्षों में नोट चुना दर्शन पक्षों जैनिस सोसो नो पड़े पक्षों जा

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाई सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए यंगिस्तान फिल्म से शिराज उप्पल की आवाज़ में गीत। गीतकार और संगीतकार है शकील सोहेल।

लीजिए सुनिए अगला गीत यारियां फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है प्रीतम ने।

वो लम्हे फिल्म संगीत अभी आपने सुना के की आवाज़ में। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और संगीतकार प्रीतम। आइए सुनते हैं अगला गीत व्हाट्स योर राशि फिल्म से, सुहेल सेन और तरन्नुम मलिक की आवाज़ों में गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है सुहेल सेन ने।

कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य के आवाज़ों में लीजिए सुनिए वेकअप सिर्फ फिल्म से गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान।

अभी आप सुन रहे थे इश्क विश्क फिल्म से कुमार सानू और अलीशा चिन्नई की आवाज़ों में गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आई लव न्यू ईयर फिल्म से सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में गीत। गीतकार है सईद कादरी और संगीतकार प्रीतम।

0: दासंग शिराई मगमी की उत्तोंग ने डिग्री में नंगा फिल्म मेलोरिक सनाजत्स गजे आकाशवाणी लेने शुरू जिक तंग इन पेदोगच्छ सोत कसता तो सोत सभी गिल्टिंग ने लदाख सेना नाचुल तंग दिलचस्प सनाजत
1: Shingto Padget Laskungse Departmental Orchard Kam Nursery Sika Shingthok Tangsa Gun Auction La Salchisinok MOCN Ngemeka Shingthok Tangsa MOCN Saspoleka Shingthok MOCN Tersetang FPN Sumur Guneka Shingthokun Auction La Salchisinok Thugdo Deutkan Gune Sianju Shugu Gun Chief Horticulture Officer Lea Chilza Junitses Nishur Saruk Ngeme Chuzot Nisesang Smun La Letuko Shidok
2: लद्दाख नंगपे चौधरी चौस ने ले मोती मार्केट दून लयोतकन कादमोचे पार्किंग बो टेंडर ग्यूते लोची की फियार शुला सरचे सिनो मीमांसूजी की ई मोटर खोले बोर्ड से नसा वो निस्तोंग निशुर सरुगी जुलाई से चेस चिगने निस्तोंग निशुर सब्दुनी जूनी से सुमचु चुकपा लोची की फिया लाचे का लेंदो दियोना राना आधार कार्ड तंग मोबाइल नंबर न्यम्पो स्यांजुगुन जूनी से निशु छकपा नांगसोसी इक छंगा लेपचु गोस्तेनो यांग न्यम्पो किरमोस्तोंग चिक नॉन रिफंडेबल अमाउंट इत्सुल्लास कांगोस्तेनो जुरु जिप्सल इन लास्कुन ने थुग्युजात
3: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: Las es que chipchate no coin, las chocan las tea, las luce, las contusica, dubjuce si ca salte no. Stojume coruk natsostan, namlenanga pogures, corilon popopender yadove, bat matupcani sacat kun, yasker bat tupa joches la garris sundus kun, coruga japstorchic, chickpepia, manpa, matsatpe, mirixi, chinjukstan po, jochesipia, lotak chate in okmalto, gelsa new delinanga, petangtang, chusconica, gelchildan its hospice capsla, sungshat zatus, ibumula zateno.
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी थुसदे जिक लता गुजुंग आजदे टोंसी छेनमो आशीष खुंद्रा तंग्यांपो थुक्सदे यार्गे सितोर्चा सोसे का सुंग्रोस जातेनो इनांगा खाक्चा निल्दाने का क्यापेक्से नांगा पेने कुन लोचेस ला जुआ पुलतेनो इ थुसदे ट्रा बीजेपी स्टेट टीपा जोनबा तांगस्दे पुंजुरबा ग्यालपी वांग्याल स्टेट टीपा जोनबा तांग परबारी तोनगुट्टाशी श्याम रचोंगे खालसे चेतु जुर्बा तंग स्टेट दिनसपा लुबजंग शेरब लामा युरुसाना से चेतु जुर्बा तंग स्टेट किसान मोर्चे टोंसी डॉक्टर गुरुप दोजे कुन जुक्ते योते नोक तुस्मी गुने स्टेट ठीपा टैची गैलसन खाचुई का नांजुन ला टोंसी छेनमो तंग थुक्ते नोक सोक्सपेरेंस ला तुस्मी गुने दक्षे गुनर लो नंगा कैपेक से गुलजोक से गर्सपाल लोचेस ला जुआ पुलते नोक इबो गुर्जी छाचेस ने यर्गे से लास कुने का ख्यातले बिंजिक तां एनोक मोलते शदा जाते नोक। ड्रग्स स्कोला हिमे शुकपाचन ngas de sana senanga hagutang che sedigrim jik tal dik jate no inanga gamul patang ngas de tusmi tang laskung so se laschet pagun tus de no e digrim inanga likire estim gurmed namgel khalse ese chu chang nurbu district drug de addiction awareness team me tusmi psychiatrist dr patma forensic team me skujabs purnima tang mimang smang po jik jukste yote no degree me scaps la sungshat zat khan gune drug suggest the drugs len khan mi jere nang chang sta chi so se ka khat ngan pa lep khan gune school la shada jadin jik tang khong gune drug se thoga hago scop thaps gospa testor sal goshe counseling tang nyor son te yot khan gun iskar na mal malika kyonches gune school la shada jat deno itus khaspa gune junu gun la khamjang chane mi che puches tang drugs ne thagring a dukche se hago gun salte no yang degree me jukdi scaps la chitsox po drugs met khan chan jik tang khamjang chan jik gyur chukches la khaglen khan changme na to kura jat deno ए नसुलगुन निचुरंग लंगेसला आकाशवाणी लेने संचेसला पुलिंजिक तांगन चिलुंग निस्तोंग चुबजी ने फाला ग्यागर पोलु नत मेत खाने युल जिके चुल्ला कैप्टर संतेन पिन निस्तोंग चुक्षी के ना पोली वायरस युद खान केस चिक नुब चुक्स बेंगोले हावरे नंगा बिंते इन पिन ए युले नंगा पोलु नतर सावा ने मेत खान चुचे सिपिया पोलु मंतुन स्टेचे से डिग्रिम ग्या छिनमिल दाने का चिक्सतोंग गुप ग्या गुप चुकोआ ने फल्ला शुला जाते हैं नोक यंग टोंग टोंग अश्कोते पोल्यू मंथुन स्टेरसेस ने इन्नात पुर्सावा ने मेत खान चो तुप दे नोक युले नांगा पोल्यू मंथुन ठीक्स पा निस स्टेरसेस से लास गुलबो लो चिक खिकोरे नांगा लान निस शुला जादें जिक दांग नोक चाप्सकेस पाने रांग लोश ना चुकपा लोनते योत खान ठुगो गुनला पोल्यू नात ने गोक थाप्स चोचेस ला पोल्यू मंथुन स्टेरिन जिक इनोक यांग दक्से रिंगस्लां युल पोल्यू नात अर्सावा ने मेत खान युल जिके चुल्ला स्तान पुआ बोर्चे से पिया पिलोक ने पिलोक युल गुन्ने लेप खान ठुगो गुने का नास्तक्स बोरा जादिन जिक तांगानो एना चोसला लादाग से नांग खाम्स दे लास कुंग से चोस ने पोल्यू नात सावा ने मेत खान चोचे से डिग्रिम चात्मेन ला बोरिन जिक तांग एनाल जे छेस निशु चाबगेत जाय निमे जागा चाबस्केस पने लोश ना चुकबे ठुगो गुनला निये खोरे खाम्स दे सोनास गुने का पोल्यू मंतुन स्टेचे से डिग्रिम ताल दिक जाते योते नोक Sardar Indrajit Singh Sidhu Kong IPS Pon Bozurba Shukstenok Kong Padma Shri Jingstak Stangnyam Por Chiwa Pultenok Sardar Indrajit Broom Warrior Chula Ngunanok Yang Lasne Kane Zula Jans Testingne Kong Stangdai Jatche Se Charlas La Yerket Zadin Jiktanganok Kong Skola Inyandun Bo Sanajat
2: स्वच्छ देश के लिए अनमोल संदेश सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू पद्मश्री 2026
3: एक ओंकार सतनाम
4: गुरु नानक जी ने आज से 5-600 साल पहले एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए बोला था कि पवन गुरु पानी पिता माता तर्थ महत अपनी माता पर कुछ गंदगी फैले तो सबसे बुरा इंसान हम से कोई नहीं शर्मदा कम तय कूड़ा फैलाना इज्जत मान द कम कूड़ा संभालना और लोग कूड़ा फैलाने से शर्म नहीं करते सफाई करने से शर्म करते
2: ये है पंजाब पुलिस के रिटायर्ड DIG इंदरजीत सिंह सिद्धू जिन्हें चंडीगढ़ के लोग रोज सड़कों की खुद सफाई करते देखते हैं 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया ये जहां भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते
0: कसता खपटक शिक्षा नजात दूरदर्शन के अंदर ली न सुलेज दिखा कर पिया अर्जुन छंगमाने कारगिल नुब्रा चंगथंग श्याम द्रास तंग जांसकर गुन्ने स्टिंगर पिया श्यंजु लिंच से इनोक रेस्तोस पकुन टीवी नसुल कवरेज ना थोंगम शन वीडियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी नंगार साल चन नसुल क्लोंचेस तंग तंग से सितोगा थोंगम शन रंग लगा HD 4K वीडियो कैमरा 4G 5G कनेक्टिविटी चने स्मार्टफोन तंग रंग लगा मोटोकोलो योद्धन गुना ना आश्चर्य साल से सिनोक Restos Pagunish Gyanju Kun Rangrang Rzong Niskang Goste Enok Gyanju Pulche Sesting Juge Sestrans July Ses Juruk Borte Enok Jibsal Du Dashin Kander Nasul Dekarne Tugus Zat Goste Enok Akashwani Legute Ladarse Nasul Nyemena Lanji Ngato Chuchorgu Nyeme Chuchor Nis Tanskar Mangab Chunga Pito Chuchor Nga Tang Pito Chuchor Dun Tanskar Ma Chunga Gune Ka Sanchez La Pulin Jik Tang Yot Yang San Kan Langyas La In Nasul Kun Shichi Sostar Ge Platform Soso YouTube Ka AIR News Le Facebook page ka AIR News Le X Handle Ka AIR News Le @ Prasar Bharati Website ka www.newsonair.gov.in tang LinkedIn khan dikrim changma News on AIR mobile app ka skang da sanchis la phulin jik tang Akashwani lene nasulton kasata dilchat sanajat

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर सूर्य घर।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना।
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजमुल अंदराबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। G7 लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए की डिक्लेरेशन की इख्तियार। वजीर आलम अब्दुल्ला का दौरे बांडीपोरा, 100 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता न करने का दोहराया अज़्म। और सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। खबरें तफसील से। G7 लीडरों ने आलमी इस्तेकाम सलामती से मुतलिक इशरा को बढ़ावा देने, नीज मुनज्जम जराइम का मुकाबला करने के लिए मुतअद्दिद डिक्लेरेशन इख्तियार की हैं। एक बयान में इन लीडरों ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मुकदम किया है। उन्होंने इस मुआहदे को इलाके में तनाव को कम करने का एक अहम मौका करार दिया। G7 ने एक और ऐलानी के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत कौमी सलामती, सेहत आमा और इक्तिसादी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने एवियन फ्रांस में G7 इजलास के हाशिए पर जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम ने कहा कि उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। दरी असना वजीर अजम ने G7 इजलास के दौरान एक अहम वर्किंग सेशन से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए मुनज्जम लाहे अमल इख्तियार करने की जरूरत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, नई सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों से भारत ने पैगाम वाजह कर दिया है कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना कियादत में कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता लाने के मुल्क के अज़्म से घरेलू सलाहियतों को तकवीत बख्शने के साथ साथ फौज की तमाम शाखों में जदीदकारी लाने में भी मदद मिली है। उन्होंने पिछले 12 वर्षों के दौरान दिफा के शोबे में मुल्क के सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, पानी और दीही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुक्म जम्मू कश्मीर के तमाम खितों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। वज़ीर आला के दौरे बांडीपोरा के हवाले से हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने हमें ये रिपोर्ट दी।
6: वजीर आला ने अपने दौरे के दौरान तकरीबन 100 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ई इब्तदा अंजाम दिया। इन मनसूबों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजन का एडिशनल ब्लॉक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एजस, मरकुंडल हाजन सड़क, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा, कार पार्किंग बांडीपोरा, वाटर सप्लाई स्कीम ओनागाम समेत मुतअद्दिद अवामी फलाही मनसूबे शामिल हैं। वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम करदा स्टालों का मायना किया और इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मुस्तहिक अपराध में चेक, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के منظوری نامے اور جسمانی طور پر خاص افراد میں سیکورٹیز کی چابیاں بھی تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ منصوبوں کی بر وقت تکمیل اور عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس دوران مختلف عوامی وفود نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے اپنے علاقوں کو درپیش مسائل اور مطالبات ان کے سامنے رکھے۔ خبرنامے کے لیے بانڈی پورہ سے میں عادل اسماعیل۔
5: پہلگام کے نزدیک آڑو سڑک پر آج ایک سڑک حادثے میں دو افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک سوئفٹ گاڑی سڑک سے لڑھک کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں اس میں سوار دو افراد موقع پر ہی جان بحق ہوئے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے پہلگام میں سڑک حادثے کے دوران دو افراد کے جان بحق ہونے اور کئی دیگر کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخموں کی فوری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یاترا کی سلامتی کے لیے یاترا کے دونوں راستوں پر کثیر رخی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرانے کے لیے لازمی اقدامات کر رہی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے یاترا کے مختلف امور کی نگرانی کرنے کے لیے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے 63 افسروں کو تعینات کیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس سال کی یاترا کے دوران یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے ذریعے اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہوئے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس سال کمیٹی کے ذریعے لگ بھگ 4000 حجاج نے فریض حج ادا کیا۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: حجاج کرام کے واپسی کا سلسلہ سری نگر امبارکیشن سے کل یعنی 16 جون کو کمپلیٹ ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جو بھی آج سری نگر سے روانہ ہوئے تھے 3952 حجاج کرام لداخ کے جو 322 تھے، تو الحمدللہ وہ سبھی اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے دو حاجی ابھی وہیں ہیں، کچھ صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی وہیں پہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے۔ باقی دہلی سے اور ممبئی سے جو ابھی گئے ہیں جنہیں وہ ایمبارکیشن یوز کیا ہے، وہ اب ان کے آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وہ 29 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو 29 جون کو ہماری لاسٹ فلائٹ ہوگی ساؤتھ انڈیا، جو ہمارے دو جج کرام لاسٹ فلائٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔
5: آج سے محرم الحرام کے مقدس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی نئے قمری سال 1448 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی مقدس مہینے کے دوران میدان کربلا کے شہیدوں نے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس مہینے کی مناسبت سے عزاداری اور حسینی مجالس کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس کے دوران نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور برکات بیان کرتے ہوئے مولانا میاں عادل نورانی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
7: محرم الحرام کا مہینہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ تاریخ کے عظیم شان، حق و باطل کے مورکے کی نشانی بھی ہے۔ یہ مہینہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے کو اجاگر کرتا ہے، لمح حسین اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد و اہمیت کا پیغام بھی عام کرتا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا رنج و غم اپنے دل میں رکھتا ہے، مگر کم ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس مورکے کا اصل مفہوم و مقصد سمجھا اور پھر اس مقصد کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے جنگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا خاندان کی بقا کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ اسلامی حکومت میں بدلتے رجحانات کو روکنے کے لیے کی تھی۔
5: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیراعلی عمر عبداللہ نے محرم الحرام کی شروعات پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ مقدس مہینہ عالمی انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں مکمل امن امان کا باعث بنے۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے بھی محرم الحرام کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
8: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
5: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सरकारी मुलाजिम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
9: ये जो मनशियात की लात पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असाशे थे, अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाए, कम से कम मनशियात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
5: पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कुलगाम जिले में पिछले दो महीनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और 10 इन्हदामी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने जिले के तरक्याती कमीशन के हवाले से खबर दी है कि जिले में कार्रवाई के दौरान 90 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सर शर्मा ने आज पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा छन्नी हिम्मत जम्मू में डोगरा कल्चरल हार्मनी एंड एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन का इफ्तिताह किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पंपोश कॉलोनी पलोरा जम्मू में खसूसी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत की 12 साल की कारकर्दगी को उजागर किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में क्रॉप इंश्योरेंस से मुतालिक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दीगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खेत बचाओ अभियान की मुअसर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए किसानों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ किसानों को रागिब किया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12,89,000 किसानों को लाया गया है और 53,58,00,000 रुपए के क्लेम्स भी दाखिल की गई। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से आज डे केयर सेंटर TRC जम्मू में मुआवजा शहरियों की इज्जत अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थी। वजीर मौसूफा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरी एक शमूलियाती और तामीरी समाज वजूद में लाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार ला रही है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को उजागर करें। पार्टी के तर्जमानी आला तनवीर सादिक ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के उर्स के सिलसिले में जायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने मुतादिर सियाहती और मुहिम जोई मराकज मुसलसल बंद रखने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस अमल से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इन मकाम को जल्द अज जल्द खोलने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुख्तलिफ सतहों पर गुनाहों मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में सिल्क समग्रा के तहत 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें काफी तादाद में श्रीनगर जिले के किरमकश हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर मौसूफ ने इस मौके पर किरमकशों पर जोर दिया कि वो अपने आप को रेशम साजी के जदीद तौर तरीकों से रूशनास कराएं ताकि रेशम की पैदावार और मियार में इजाफा हो सके। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और शुमाली जोन कल्चरल सेंटर पटियाला नीज और जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा के बाहमी इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनाकिदा सांस्कृत यात्रा सिंधु दर्शन फेस्टिवल में भारत की सकाफत गुनागुनियत का जश्न मनाया गया और मनुष्यात के खिलाफ मुहिम को मजबूत किया गया। फेस्टिवल के दौरान मनुष्यात से पाक एक समाज के लिए सकाफत अकीदे और नौजवानों को यकजा किया गया। इस मौके पर MLA लाल चौक शेख एहसान परदेसी मेहमान खसूसी जबकि MLA रामनगर डॉक्टर सुनील भरद्वाज मेहमान जीवक थे। इस मौके पर और लोगों के अलावा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा भी मौजूद थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से आज श्रीनगर में एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ कलमकार और कॉलमनिस्ट संजय पंडिता के अंग्रेजी शेरी मजमुए सैफ्रन विंड्स की रस्म में रूनमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब पर साहित्य अकेडमी के एडवाइजरी बोर्ड बराए कश्मीर के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान, मारूफ कलमकार डॉक्टर सतीश विमल, एकेडमिक एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम और कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। आज जमीन के बंजर होने और खुशकसाली की रोकथाम का आलम दिन मनाया जा रहा है। यह दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुशकसाली के असरात से निपटने के लिए बैन अल-अक़वामी ताउन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलोई आफ्ताब 5:19 पर और गुरूबी आफ्ताब 7:45 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म होता है। अगला खबरनामा कल 7:45 पर कश्मीर में नष्ट होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
10: समयन आदाब। आज का तबसरा लिए मैं शबीर उज़्ज़मा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पायदार और आलमी तरक्की के लिए हिंदुस्तान के अज़म का इआदा करते हुए कहा है कि दुनिया को महज बाहमी ताल्लुकात तक महदूद रहने के बजाय यकजहती एतमाद और मसावात पर मबनी शराकत दारियों की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये बात फ्रांस में मुनक़द G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन से खिताब करते हुए कही जिसका मौजू नई शराकत दारियां कायम करना और बैन अल-अक़वामी यकजहती की असर नौ तामीर था। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में मजबूत बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों के लिए एतमाद बुनियादी अहमियत रखता है। उनके मुताबिक हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत पहले के उसूल पर अमल करता आया है और इसकी खारजा पॉलिसी कदीम हिंदुस्तानी फलसफे वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक खानदान है पर मबनी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में वसाइल की कमी नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की कमी सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म मोदी ने COVID-19 वबा के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से दुनिया के 150 ममालिक को वैक्सीन फराहम करने का जिक्र करते हुए कहा कि आलमी बुहरानों से निपटने के लिए तावन और एकजहती नागुजीर हैं। उन्होंने मशरिकी वस्ता में जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि तनाज़ात का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने 3 हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत का मामला भी उठाया और समंदरी रास्तों और समंदरी मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। फ्रांस के दौरे के मौके पर उन्होंने वहां मुकीम भारतीय बरादरी से भी मुलाकात की। फ्रांस में तकरीबन 1,19,000 भारतीय शहरी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। G7 कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई जो तकरीबन 16 माह बाद दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात थी। दोनों के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई और बाद अज़ां बाकायदा दुतरफा मुज़ाकरात का आगाज भी हुआ। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि आलमी रहनुमा दुनिया की फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं। काबिले जिक्र बात यह है कि हिंदुस्तान को मुसलसल 8वीं मरतबा G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। फ्रांस पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो आलमी रहनुमाओं के साथ अहम बैन अल-अक़वामी मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए पुरजोश हैं। G7 एक सालाना इजलास है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता जमहूरी मईशतों के रहनुमा आलमी इक्तसादी सियासी और सलामती के अमूर पर मशावरत करते हैं। फ्रांस के दौरे से कबल वज़ीर आज़म मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर भी गए जहां उन्हें मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया। ये उनके करियर का 30वां बैन अल-अक़वामी एजाज है। इस दौरे की एक अहम खसूसियत मुश्तरक एलामिया था जिसमें दहशत पसंदी की सख्त मजम्मत की गई। स्लोवाकिया के सदर ने पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी इंसानियत के लिए नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसके खिलाफ मुतहिद होकर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर ग्लोबल साउथ और तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मसाइल और खदशात को मुअसर अंदाज में पेश किया। उनकी क्यादत में मुल्क में अमन तरक्की और नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं जिनके मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस दौरे से न सिर्फ हिंदुस्तान के यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे बल्कि मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के नए मौके भी पैदा होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों में तरक्याती सरगर्मियों को मजीद वसअत मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है जिनमें सियाहत का शोबा खास तौर पर काबिले जिक्र है। حالیہ برسوں کے دوران بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاحوں نے جموں کشمیر کا رخ کیا ہے، جس سے نہ صرف مقامی معیشت کو فروغ ملا ہے بلکہ خطے کی خوبصورتی اور سیاحتی اہمیت بھی عالمی سطح پر اجاگر ہوئی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
11: ناجی آکاش وانی لیلی شنجگ دن ان سانے چھو سو جگیات چھا دک کسطا بلٹی ڈگریم میں دو اچھار بو سانا زد ڈگریم پلکن عبدالقیوم ڈگریم کورک زد خان سونم آنچک۔

0: ngā sīngā lī kī tīlān pō lī kī nā hī hāmbū jīwē ngā lā tī yū chā zibā nā ngā tī gā sāng ngā rāng mā shīrī chāng gā sāng ngā tī jīgē chāng ngā rāng gu nā ngā rāng sī education nī bā rāng nū sā gā bā rāng nū kī ngā chār mō nā mā lā pāi lē wā lī education nī sā bā rā bā nā chūn tē lē wā lī mā lā kī primary बाकी की यहाँ लगा जरा अति पेरेंट्स का जैसे पहला चौक कौन सा था आज दूसरे जी टाइम पे है मतलब दो या तीन साल बाद लगा तो मेरे स्कूल लेट एडमिशन तमाम था शुरू बन गया
1: सर
0: कुछ इस ना कुछ मतलब पांच छह साल मिलने क्यों मत दूसरे दो बार ना फूड मतलब बिल्कुल स्कूल या अति माहौल पुना स्कूल इन्वायरमेंट पुना था मतलब जॉब चुप पला खोल अच्छी वैसे साल सब खोल गाँव वैसे स्कूल ओम वस्ता लगे तो दूसरे हर किस्म का गवर्नमेंट सिर मुका हर किस्म का डालना पूरा सहूलत था जो मतलब हर किस्म फूल दुख पा दुख फूल लाफा फूल गेम से खान गेम से फूल यहाँ टेलिम हर किस्म टेलिम का मास्टर के संगे का मेहनत बस यंथु मेहनत बसे चाजू यंग ना पे फूल ये खेल से फूल जैसे कि आप फ्रंगो मतलब दो या तीन साल फूल नसनांगे से मतलब बिल्कुल खोल सात कापी वापी मल निकल बन जू खोल सिर्फ खो ये लखपा का माची बस जान चुपन खोल बिल्कुल खो ये दुख पा लाफा सुकुल ने सिर्फ सुकुल पे ओम या माहौल पर खोलना सभी कोशिश बन जू दें कुल्या कुल्या इंशाल्लाह खों एक साल चीज वॉशिश जब नर्सी है ना खों पूरा सुकुली माहौल पुल जहाँ फल दें नहीं खों ला कुल्या कुल्या चलो सारी तरफ लेंगे खोला रोज ताकि फ्रूचो सुकुल जो मन खों जिक से सब से बिल्कुल माहौल पुन चुक में आ जाए दें खों कुल्या कुल्या की माहौल पुन चिक सो जुक पे इंशाल्लाह दें नहीं इसी फ्रून हो सके खों से लिया बसेंगे पूरी कॉन्फिडेंस गेन बस जुक पिका
1: लद्दाख गंगातिर ग्यार गंगू गार गार प्राइमरी स्कूल आंगनबाड़ी सेंटर का संग अटैच ले आंगनबाड़ी फ्रून जो मदान लोंग इसम्पा फ्रू संग मा आंगनबाड़ी गुन दुख से खोदे छुंची जंग आंगनबाड़ी सेंटर करना मिडिल प्राइमरी स्कूल का स्कीम से अक्षसपो अटैच लक्षसपो सी इदंगला चुक खो स्कूल धोन मना या फ्रून लक्षसपो इदंगला चाच से यार दो वांजू या दे बारे यहाँ छुन चिचिक कसल भी जो
0: बिल्कुल सही कसल भी जो इसे मैं समझू ये आंगनबाड़ी संग एक बहुत मतलब बेहतरीन यंग खुश चुदी दूसरे आजकल नैनी कोची में पचू दूसरे आजकल नम जानू प्राइमरी स्कूल करना आंगनबाड़ी सेंटर का मतलब कुले बस चु एक बजे तक खो सुना आंगनबाड़ी सेंटर की लाख पांच लुस पचू गया खो दूसरे दो या तीन साल फून एक बजे बाला खो से खो इसी ये लाख तू स्कूल अंगे लाख वाला बाजू बाकी जहाँ आंगनबाड़ी खो उसी अलग खो गवर्नमेंट इसी अति कुंता आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट इसी आई सी डी एस पुन इसी पूरा बिल्डिंग से सीचू अलग अलग रंग खुंदा बिल्डिंग से बिल्डिंग के पूरा वर्ल्ड समय का टेलम स्पेयर खो उसी गेम सी सामान हर चीज़ से सामान खुंती टीचर को खुंदा मखो से मतलब फूल हर तरह खो उसकी तरह खेल कूद ना खारजी संग किस्म किस्म खो पर वीकली खुंती खो आज मीनू आज दे हिसाब में खो खारजी चो से तरह से ये हम बेहतरीन लेख ना जलबा प्रोसेस स्कूल प्राइमरी स्कूल ना आंगनबाड़ी सेंटर अनु कॉम्बिनेशन जमल है हम बेहतरीन जुड़ा जो
1: सर मसों दोसे जो यंग्स पेरे चिक दो त्रिजुंग आयांगला अति गासंग प्राइवेट स्कूल चीजता से क्यों ना जो प्राइवेट स्कूल का दे अनु भामानला खुंती जंदी ना खर्चा सो में ना हाल ते ना ऊंचा सी चांस में दे मैं
0: बिल्कुल सही
1: अति गवर्नमेंट स्कूल का दे अनु गवर्नमेंट ही रोल ला ना फ्री चिक स्कूल ला चूक फना फल्ला या खोए खत साथ से गवर्नमेंट से खर्चा पे जो कौन ची ची थोप धंग कत या इधर से गवर्नमेंट ने रोल ना ओंखन कत या अति प्राइमरी स्कूल का देनो जो थोन माना दे फ्रून ला इधर से थोप चुए जो दो नहीं बारे हैं चुन चीज जिप्सल बसे या अगर से कसल भी उन्हें अदाना लेख से न लेख मुगे जो
0: बिल्कुल बेहतरीन यंग बिल्कुल मल हम हो गए यहाँ से सवाल चिकटी जो कि दूसरे का ना से ये गवर्नमेंट स्कूल के दानो जो प्राइवेट स्कूल पर गवर्नमेंट स्कूल पर तो प्राइवेट स्कूल का प्रेफर मतलब इंशाल्लाह था आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल का बहुत बाकी तो गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज है ना जो मतलब बिल्कुल ऐसे लेकर दर्ज मतलब फ्रून स्कूल ऑफ है ना मतलब पूरा हर जैसे कि यहाँ लगा गया मुझे ना फ्रून पहला तो फ्रून गवर्नमेंट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म था मुझे पूरा बिल्कुल पूरे चाहे गाय फ्रून चाहे तो फिपो निचलो चाहते चाहे शर्गो निचल फ्रू गाँव मतलब गवर्नमेंट तरफ ना फ्रून यूनिफॉर्म फैसिलिटीज पूरा मंजू ध्यान इस बार जो फ्रून ला अगर फ्रून 4 या 5 किलोमीटर से बाहर ngati school ban travel ban khon dul ban ju dol aso government si pura travel kho hang sang khong I kharcho sa government bu thak ban ju government bu si mala zumit ge government kho lu sang khong si lhamo phul lama ge education ge zumit kho ban ju da the third point po ju mid day meal zara ju zara ju zara zara mid day meal de ju government kho mid day meal mala zara ju ma zara ta ju zara sa menu girin ja chi girin dal ta na bel son ma ta na son ma ta na de la yan qism ba har qism so halat zero sa mala barabar phun la tang manju jo to for dana ho sene shobu ju ya books please books and kam sa kam books agar fruit chi singa na books ona kam sa 3 saadi 3 4 hazar tak mila kharcha mal books books manju government sir wa books da pura free to manju de government ye facilities mala ha dusre mala ha chiz kam classroom kam sa mala har chi kam building kam sa har qism matlab sahulat mal government school ke mal bilkul kami mal bilkul me jo khuda
1: ne sir me samjho gon dose young spirit nga do tri ju dose yang si barmet kasal bi ju yang si ngada si gav rich la ngada ngi sab na ju tlm mi sare khang ngada khon sab je ju gon di tlm mi matlab po chin ju gon di sab jo po ju snapi wax sing ngada ngi sab pa cha ding is ke nu khat po chi ju farak po chi ju de bare chun chi ki yang si jib sal ba se kasal bi ju
0: bilkul sahi ju dose yang ki tlm wala kashi sawal po mala lekhna behtareen kashi bhaju
1: inju
0: snape ba wala matlab ta jaisi ga samal drum mala senior chi men jo snape ba jaisi ki mala pehle jo hum ne gada shuru bana
1: jo
0: tele me badare so book open basna
1: jo
0: ye gana jo shuru bet ju
1: marshes
0: ta a dose ki aaj ke time me ki aaj ke ki time pe anu dose ki teacher class mala compulsory ju
1: sir musu
0: department ke tarah mala fully compulsory mala bilkul kho one ke tahat mala hum compulsory ju pehle hame apna ne gada lagati diary maintain bas pan ju
1: marshes teacher khan
0: teacher diary maintain bas teacher diary me chi pan ju mane me gala chote period chahe english chahe science chahe urdu chahe sona mujhe jinna gala exam period na de period tahat mujhe gala lesson plan po taiyar basna ग्यारह टॉपिक पे हमारा पूरा लेसन प्लान चार्ट तैयार बस नंगा जन क्लास हंसों से पूरा ज्ञात तहत फूल नंगा से पूरा सुना हुआ तैयारी बस सों से मतलब चौक सों से शोभों भर डायरेक्ट सों से मास्टर बाद पूरा सुना हमारी पूरा तैयारी सों से लेसन प्लान इस हल्ता बना फूल न संग जबरदस्त हक जो गाना सा बिल्कुल मेरी कॉन्फिडेंस नहीं मंगा कि सब चंद ये मुझे पता है क्यों क्यों मजबूत फूल न संग ना पूरा सही तरीके से ना लगी खोल सब यहाँ जो
1: गुआन दोसे जो यंग स्पेरे चिकना या दो त्रिक समय जो गासंग अदंग ऐसी चीज संसाप ना या दोसे अदंग लस तख्पा जो दी टॉपिक का संग लोपच लो सुंगा जो या सभी दोस्तों से लोपच लो सुंगा भी नहीं गुआ जो गुआना इधम उस्ताद कल्ला जो गैरगन कल्ला जो गाज दोस्ते का इधम ला या ट्रेनिंग कथो पे जो गा गाल जाने इधम ला या ट्रेनिंग का ग्वेज जो वन की ट्रेनिंग कतां से जुग पा इधम ला यंग स्कूल का दें लोग सुसों से ये फ्रून लस्सा वने इधम ला चाच से और दोंगों गां जो वन परमेत ला ये ट्रेनिंग थो बे दुखचास पो इधम ला चाच से छासा से जो या दे बारे छुन चिक्का साल भी जो
0: बिल्कुल सही जो मेला जैसे यहाँ से कसल भी हूँ जो हर साल मल अल्टरनेट लोग इस बार इंगेला शोभुन चेंज गुआ जो शोभुन चेंज गुआना गवर्नमेंट मतलब इतना ज़्यादा सहूलत आज के डेट में सहूलत यहाँ से इतना ज़्यादा खो भी नहीं जू कि हर साल मेनली ता को जैसे कि खुश चलो सीजन पे जो मतलब स्कूल डूल भी टाइम पे गवर्नमेंट से ज़्यादा मतलब अगर मतलब मतलब जरूरी नहीं खो सी स्कूल टीचर रहे सब्जेक्ट टीचर पोखेरे ट्रेनिंग था मुझे मैंने अंगेला रुकूनी छुट्टियाँ नुजू या मैंने स्पेयर छुट्टियाँ नुजू अंगे गति को डाइट ले जू डाइट ले खेरे गदा सको एक्सपर्ट मतलब स्पेशल मतलब बाहर न सको से गति ले आ गति मतलब नचन खसपा था मतलब खर्चे खसपा खो जू खसपा गति लदा न सके जू बाहर न सको से बुलाए वैसे क्यों से अंगे गया सब्जेक्ट पिखा गया टॉपिक पिखा गया बुक पिखा अलग अलग तरीके का गा तरीके का ची तरीके का फूल ना सब्जेक्ट गा तरीके का फूल ची बस हक चना जू गा तरीके का फूल ची बस गदा सी हम बस हक चुना दे तरीके से हम पूरा ट्रेनिंग ट्रेनिंग पो गवर्नमेंट सी मत गवर्नमेंट छन मुआ गदा ट्रेनिंग पूरा गेला छो बन जू ले ट्रेनिंग पे गेला खो सी मतलब पूरा हर चीज से गवर्नमेंट पुसी गेला खर्जी बर्जी चा बस हम सब डाइट पुन तरफ खुनता सी गदा tāṅ mañchū, training mañchū, bēhē, bēhē ca mañchū mañchū.
1: Sēr mañchū. Sēr mañchū. Yāngs pērē chīk ngā dō trīchās pō lēkṣē nā kākṣēn sā mañchū, irī fēk pō mālā yāng lā nōkari thop pā nā fāl lā chū, gāshār yāng primary school kādhē yāng dūkṣē, yā sābē nyūt pā chū, gwañ irī thōngwaṁ pō dō nā lēkṣē nā mañchū, ngā dāng lā shtāk pā chū gāsāng ngā dāng āsī, nāng chīgī spēw ngā dāng lēn nā chū, ngā dāng lā nāng pō chua pā chā snā chū khuē rdān pō chū gā. primary school la idang la cha che narfa bar go se ju narfa ba na gyan la donen donen brun si ya cha che lekh mo bas go si dun lenang ju ya de narfa na iri thongom si bareng ya si dikha chun chi kasal ju
0: bilkul ya si sahi ju bahut gasha kasal bhi us ju ye to se primary level ye sa po lekh na sa ju man lekh na man ga man dusanga omi tangal sa mala alhamdulillah 10 15 साल सर्विस गंजु
1: सर मसो
0: मा मेलिंग आ प्राइमरी मा छंगा प्राइमरी स्कूल दुखन
1: सर मसो
0: ये प्राइमरी लेवल ही साख पोजे ना जो मला जरूरी जो मला बिल्कुल अहम मला मला जरूरी जो चाहे बना यही से मला गे खाना मला पुनी को
1: ज्ञान ना
0: इन जो मला गे को यही से गे ना शुरू हुआ ना ज्ञान ना थोने में जब की धन पो सही में ना ज्ञान ना बिल्कुल फुल मला बिल्कुल सख्त प्रॉब्लम हुआ जो मला गाला थोन थोन जैसे कि चलता मैं गरीब हूं खम खम खुरान उपरूनी मतलब प्रूफ बहुत सारे मतलब सर्विस सब शुरू हो ज्यादा मतलब प्रेमी लेवल पे अगर मदान सही तरीके से मदान लखों को सही तरीके से एजुकेशन साहब उस साहब से एजुकेशन पर सही तरह से ना दे सही से बस सब पे प्रूफ ना थोंगन थोंगन जी मदान लावा लखों कॉन्फिडेंस पर संग साहब पर सको जरिन जरिन जी थोंगन जी मतलब बहुत बेहतरीन गुआ जो है तो फिर ये प्राइमरी लेवल साहब पर मदान दूसरे ओम में संग मदान सु या टीचर चीन दूसरे सुन मदान सी मास्टर चीसु गिरगन चीसु टीचर जी यो नजू दोन ले सर मो primary level primary khangadan zobet stress na sing yin thup ngadan sing yin thup ngadan gi khong langadan si mehnat ne mo khong la isa po yit ser mo ga su ne sangadan dosa government si ngadan la training da su ju dosa ngadan la efflen drin chi ga phul na ga tar ke ga sap chen phul na chi tar ke ngadan khong ya chen duk chen de ta chu win so chu win khong la de ga ma confident gains ba se gi primary sa po yin thup ngadan phul la lang ba sta bi koshish ba chu ba se bilkul ser mo sa
1: gona yang spere chik nga yang la ju pa yo trik sa me ju nga dang sang ma lar tak pa ju miu ni nga ti miu ni sambo ni ang nu do chok shio tsu ju ki private school ni ang nu gashar il tsaba in ya government school kadang in ser il tsaba nze bi sambe snapi bak la chun chi yo tsu ina men ju
0: bilkul yo chu
1: ba dosi tan khyong na nga dang la chun chi chik ya miu ni sambo ni sang gyuren chi yo ju dana yang si kasal miu ju government ni sang nga ti frun la di tse facilities tang men ya wardi shogbu ju zan ju de chang ma chang sa nga dang la na jawi met pa tang manzara ju gwa na yang si diri ngi ki nga ti program i roltari nga ti phamaun la ju ya nga ti government school ya nu fru tang chas po ju cha che chasan zare yang si nga ti ki program i roltari phamaun la
0: बिल्कुल सही जो प्राइवेट स्कूल के संग ना कुछ दूसरे तक अदाल थों थों ची चेंज जो मतलब बिल्कुल बढ़िया जो दूसरे साल ब साल गेला प्राइमरी स्कूल कंग दूसरे गेला ना कुछ मतलब बिल्कुल ने चलो रोल पर लोज पे जुया अल्ती नाम जा मतलब बिल्कुल पेरेंट्स के लाहक से गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट इसी बिल्डिंग हो चाहे मतलब यूनिफॉर्म दे जो मजा सी जरा दे जो मजा शोबू दे जो मजा ट्रेवल अलाउंस दे जो दे हमारा डूल भी दे हमें पूरा खर्चा खर्चा जहाँ से तो हर कोई टीचर जो मतलब गाँव मार्शा जिस संग तो मतलब अपना 100% देते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जो जो फिर थूक मजा सी अति पेरेंट्स के लंग अति उल्पा समी गाय न संग गवर्नमेंट स्कूल का जानू मतलब बिल्कुल कमी में जो जितना हो सके गवर्नमेंट स्कूल इनरोल बसे थ्रू गवर्नमेंट स्कूल कोशिश खर्चा माल में पंजू यहाँ से गेन गाँव खर्चा माल में पंजू वहाँ से मतलब हर चीज को फ्रू
1: ফানখেল ফ্রালুক বেজু তা তুস্প ইনসের gyan la dikha iririn thoswa kaden wafin se chak chas pula ju ser muson zare ju bakshi
2: lan pola idan na bas trilani zala nge si dang la stotke jikko chuwe stotka tan yot Muhammad Hussein rehnuma stotko la idang si snap
0: nis

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्स ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 213,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लग कर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
3: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France, on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
7: Excellency, हम जानते हैं कि maritime trade की दुनिया में भारत के लाखों seafarers आज दुनिया के अलग-अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंस, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।